आदि खुला खबर को साथ में गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भर पर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दर का लागि प्रतिबद्ध। हिमाल सुनचाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचाँदी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।

0: सुनिश नहीं हम लोग आने में 10 बजे तक था।
1: इस समय को साथ में जेतुल सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िए पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।

0: सुनोस ना, आइए हम लोग आने में देरी बजे का
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: मुख कैंसर तथा अन्य कैंसर जांच, दिशा पिशाब तथा खकार जांच, वृय जांच, ट्यूमर मार्कर, विटामिन डी, बी 12, रक्त अल्पता को जांच लगायत का विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण न्यूनतम शुल्क में गरिनुका साथ ही होल बॉडी चेकअप विशेष छूट में गरिन्छ। त्यसै वैदेशिक रोजगारी में जानेहरुको लागि प्री मेडिकल समेत गरिन्छ।
1: सम्पर्क वालिङ प्याथोलोजी प्राली तल्लो वालिङ अल टाइम फार्मेसी को अगाडि।
0: सम्पर्क फोन नम्बर 0635900018, मोबाइल 9840516635 र 9813969611।
1: न्यूनतम शुल्क में गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण को लागि वालिङ को एकमात्र स्वास्थ्य प्रयोगशाला वालिङ प्याथोलोजी प्राली।
2: रेडियो आदिखोला 105.4